0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा
3: बाबा। आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रॉकिंग स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायत का कलाकार को प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे क्या अपराध करते हैं?
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रॉकिंग स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: गुणस्तरीय छड़ सिमेन्ट इटा रंगरोगन लगायत भवन निर्माण का सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में पाइन्छ।
1: हिमालयन ब्रदर ग्रुप प्राली विशिष्ट नगरपालिका साथ यूनिवर्सल चोक लमसुङ। थप जानकारी का संपर्क 0663520973 मोबाइल 97463061।
2: तपाईको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना।
0: अमूल्य जीवनको हेरचाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तपाईको जीवन हेरचाहको साझेदार हामी बन्नेछौँ। तपाईको सहर सुन्दर बजारमा विशेषज्ञ सहित तपाईँकै सेवामा HDCS नमुना सामुदायिक अस्पताल सुन्दर बजार।
3: अस्पतालमा उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाहरू: जनरल फिजिसियन सेवा, महिला रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जरी विशेषज्ञ सेवा, मृगौला रोग विशेषज्ञ सेवा, दन्त रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, मनोविमर्श सेवा र जटिल तथा सामान्य शल्यक्रिय सेवा।
0: निदानात्मक सेवा अन्तर्गत भिडियो एक्सरे, ट्याब परीक्षण, ECG, डिजिटल एक्सरे र दम पत्ता लगाउने जाँच सेवा उपलब्ध छ।
3: साथमा 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, फार्मेसी सेवा, प्यालेटिभ केयर सेवा, समुदाय स्वास्थ्य सेवा, खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा र एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध छ।
0: HDCS नमुना सामुदायिक अस्पताल सुन्दर बजार 6 लमजुङ। सम्पर्क फोन 0664021123 4021224, मोबाइल 9841454848।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा
3: बाबा। आप मुझसे क्या अपराध करते हैं?
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यस, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा
3: बाबा। बस ये अपराध करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: समय दिवसो 3 बजे र साझा 6 बजे।
1: सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है भाई? कहाँ ये साले?
2: इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे।
3: It's time. I'm coming.
4: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी सहर सम्पर्क 97497938798।
5: I'm home.

0: तानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजीव
1: हेलो मर्सिंग दे एफएम 95 मेगाहर्ट्ज़।